Di Radio Nepal Yena Grisma Sherpane Sherwike ki Sangyur Senronang Jalte Jin Mausam Bigyan Bibhag ki Aring Sudur Pasimtang Lumbini Pradesh ki Tarai Sokhul ki Dasa Lalala Chajo Bangi Faruptang Lung Chenege ko Shenwa Bibhag ki Shetubnang Sen Naring Dangati Nepal Ganj Bairawa Bir Ganj Gorahitang Simarala Chajo Bangi Farup Yamgyam Kyanwa Gandaki Tang Lumbini Pradesh ki Tarai Sokhula Chajo Bangi Farsima Mimang Thotenla Kyon Fokto Putap ki Chakpo कि गौला विभाग की सुंगसेपा विभूती पोखरेल की मेमांग तिवला सुंगवा विभाग की लाका खाक सेंबो वसिंग तिरंग पांगला थेन गौला श्री छुबंगी थुंगो पेजा टिक पेतांग मे गेंदा तिवला तंग निरपोतिवला चकपो की गौला संग सुंगवा तुरंग केने कोसी बागमती गंडकी प्रदेश की फुतंग खांग्री सखुला थोक तंग डुगे कुतंग छरवा गेक थपु नेतांग वतुप संग मौसम विज्ञान विभाग की सेनकवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपकी उले छोक्मी कोसाकी तन्दोकला फोर्ट लुकुलाका डुपा छुङ्गा वदिम छोक्मी सेतुनाङ सिनारिङ्गो मोछुजो चिङ्गिला गोचु फोर्ट लुकुलाका रिङ्गिर मोछुजो चिङ्गेताङ कमा सुम्जु चोला डुपा छुङ्गो भिएन छोक्चेनला तोङुजी शैक्षिक छप्तिवा छोक्सु कोतोनाङला तोङ सुम सै गुताङ ङप्चु कुछप्तिवी फोर्ट लुकु ङ्याङ्गेम क्याउ चितवन कि रासोपकी छोक्चो मिनी माधव खनालकी ख्यान्तोक नाङसुङ लोकी मेसिन तेमा फोर्टलुकु तपकी छुजो घण्टाङी नङला फोर्टमा फ्लाका

लसे मलोक झेंगे तुई से नंगु ब्लूती लाख पसेर पा आमोद की ला नंगु ब्लूइन था शेर भी के की कोर ला तम यतियो जोकु रिमाला रंग तंदा न्योमिन डॉप ने तंग ओतुब दक भी शेरी की ला चुकाने एरगे तोंगो की तंग सुनक्योप की वो की सिरुप कोर ला संग झेंगे तुला टिक पेसिक शोप तेरिस नंग गमला ती दक भी शेरी की एरगे तोंगो पिन सिंग दक भी खांग बने रंग दिला कती गोचु गो की सिला सिंग तेरिस नंग गमला दक पु रंगी रंग लोब गो की तंग ती तिंग ला पेजा ती ओला संग लाम तेर गो की सिने लेंगे मिमांग ती ओला शोबिन तोक्स नंग गमशोक ला दक भी पेजी की लापु दासा ती खांग बारंग इंदुप तप की खांग बा पापा आमी की लाभ सिंग लाभ सिंग सिसिंग तिथि ससे ल्यावा इन सिल सिंग पापा आमी लाम बिदुप ती पेजी मेजे उतंग गेट पुगल सीमा संग गेट पुगल सीमा लापुती सिनंग टिक पे लापुती तिंग ला सेक मेजे उतंग सिक ती वासंग ससे तंबुगिनो तिंग ला लोपटोला गन लापुती से खेपर संग गिनो तुगेने रेडियो से नंग इन जुनो तु लेंगे ती ओला देख पिपे जा ती ओला शेरी तम यति खांग बने रंग टिक पेने जुनंग लाम तिर गु की तंग तिति ससे ल्यावा गिनो सिने लेंगे ᱛᱟᱯᱟᱯᱟ ᱟᱢᱟᱛᱤ ᱥᱮᱨᱤᱛᱟᱢ ᱧᱮᱨᱟᱝ ᱢᱟᱥᱮᱥᱤᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱯᱩ ᱫᱟᱥᱟᱛᱤᱭᱚ ᱵᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱥᱩᱱᱩ ᱚᱛᱩᱯ ᱛᱟᱯᱠᱤ ᱞᱚᱯᱩ ᱱᱟᱥᱟᱢ ᱛᱤ ᱚᱥᱤᱝ ᱫᱟᱠᱯᱤ ᱥᱮᱨᱤᱛᱟᱢ ᱧᱮᱞᱚᱯᱩᱞᱟ ᱟᱞᱟᱠ ᱠᱟ

लसो फ्याफुल्ला तिनी मजुश्रीसम्म त 862 तालु बेल्बो लाला छेपाचुई विक्रमसम्म 2083 साल असार लाला चुइसे गिक नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेन्मुला ना सूर्य मोक्तान सशस्त्र प्रहरी बल्से मनसुन ग्याम ठुङमा रिखाम्बा विपद ग्याम हुल्बादा सोनालाबारी युल्ला लोलोलोलो गोर गाँचुइसे ब्लिग्लारी अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस ग्याम ठङसेला तापमुला सशस्त्र प्रहरी बल गेदिम्से विपत्री प्रप्ताबाकादेला उद्धार लाभारी तिलाई दुई घाइबारी खाम्बा विमान विपत्तापरी खाम्बा ग्लाम आइसे अस्थायी बेस क्याम्प ठङबारी छे बहिन्ना प्रहरीला अनुसार कोशी प्रदेशरी गोर्ढु मधेसरी गोर्चुइसे गिक बागमतीरी गोर्चुइसे ढु गण्डकीरी गोर्ब्ली लुम्बिनीरी गोर्गेस कर्णालीरी गोर्गी थिएन सुदुर्नु प्रदेशरी गोर्भे अस्थायी बेस क्याम्प ठङसेला तापमला सशस्त्र प्रहरी से जोमो पहाड थिएन तराईला गोर्चुइसे ढु ग्लारी विपद व्यवस्थापन लाभारी विषय बेस क्याम्प ठङसे हिलबाङ थिएन स्रोत साधनदा तयारी अवस्थारी थान्बामुला धनकुटा सुनसरी बारा सप्तरी धादिङ सिन्धुली मकवानपुर काभ्रेपलाञ्चोक म्याग्दी गोर्खा दाङ सुर्खेत जुम्ला डडेलधुरा डोटीथेन कैलाली जोङ्री अस्थायी बेस क्याम्प ठङ्सी जिन्बामुला

संक्षे बमला सूचना थे संचार ब्लोन डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा से चितुवंडी संगमन बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ला गिक्सा ग्रेनवाल से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपादा अजकोंग में सवारी थे बिना डिक पर एक हम्बा बंग डिक से लमला बिसे संक्षेप बमला पार्टी ला गिक्सा ग्रेनवाल से पार्टी ला दानपु दामबारी भोट पिन बलिचा सांगुर बोन गति थे लिंग मथान शिवन ब्लोन डॉक्टर तिमल सिन्हा से चु ग्रेनवाल से पार्टी द अजकोंग में थे जिम्मेवार तबारी बंग डिक नला से लमला बिसे संक्षेप हिन्ना ब्लोन डॉक्टर तिमल सिन्हा से ग्रेनवाल से दाम्बा गोबांग से राष्ट्रपादा युल्ला खापे बिमा ग्रेन ग्लेटिम दल सोसे पिनमा युल्बा से माइबा रंगनोला से गे लासी पिनमारी बांग्ला से लमला बिसे संक्षेप बोला चुरानोला से सूचना थे संसार बोन डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा से संगीर बोन गदे थे लिंगमला सिमान युल्बाला विश्वास डाबारे आखाम साम संचार माध्यम ला अस्तित्व ला फिर बिरान से प्रश्न लाबारे खाम से लमला बिसे संक्षेप बोला चुरानोला से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपाला मियो दांडी रेबा गदे दा भोट पिनमा गे थुम निर्वाचन आयोग अनुसार तिलमा मुनाला चुइसे निङ्यामा तीबा मतदान थोलो दिनेला चुइसे निङ्या से सोमचे मिनेट्री थुम्बा मोबा रासोपा चितुवनला चोहो मिनी माधव खनालला अनुसार ग्रेनवालले तोङ्ली से ग्याजगिक प्रतिनिधि गदेसे बोकिनमा मोसाइनन् तोङ्ली ग्याजकु से गोर घाचुइसे कु भोट चेकेन ताइ बमोला विद्युतीय मेसिन ग्याम भोट पिनमा से निर्वाचनला परिणाम युनन सार्वजनिकला से लम्बला बिसे पाङ साइनन् दान्दे दोना परिणाम सार्वजनिकला बारे चितुवनला भरतपुरी सेगमेन्ट मोबा रासोपाला ग्रेनवाल से गिक मेन्दो कुचु से कु मुन्बे दाम्बारी भोट पिन से जिम्मा बसाइन दारेम योनान निचारेमला निर्वाचन प्रक्रिया ती सेलमला बेसे पाङ बमला पार्टीला सुमन मनीष झाला अनुसार छाड्दामा मेन्दो कुचु से कु मुन्बे गदेसे निचारेमरी निर्वाचन घ्याम्न दान पगादे दामसला तापमला बेसे सुङ बमला राष्ट्रपाला गिक्छ राष्ट्रिय ग्रेनवाल चुनन असारला निस्कुने हेन्से चितवन्डी सेङमन मला मोक्युल्डेन फिफा विश्वकप 2026 कोही ताम तासिटे बदुरी नेपाली फुटबल विसाम निलम्बन निपरप्ता बमला विश्व फुटबल महासङ्घ फिफा से अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फादा सरकार से हस्तक्षेप लाभ विभान एन्फादा तिलमा जारी लाभ पत्र रि नेपाल द निलम्बन लाभ मला विषय माग भहिन्न निलम्बन निपरप्ता बलि छ नेपाल द फिफा से पिनमा निखामा अनुदान अपिन्छ लता बमला नेपाल द फुटबल द विकास लाभरी फिफा से दिङ्गेग्री अर्बगिक बिमा लामा टाङ्गा पिनमा निखा बमला फिफाला अनुसार निलम्बन निपरप्ता बलि छ नेपाल से मोक्युल फुटबल थेन युथ फुटबल क्लाङमारी आम्याङमाला छ्याम्रे खाँची बनि दान पकादेसे फिर्का भ्युल कोरबारी नुन आम्याङ छ लता बमला एन्फला चोहो पङ्कज विक्रम नेमाङ से गोबाङलाबा ब्लिदिङलाई गे दुई चुनन असारलाला ङ्याकुन थुम्ब मोबा तसैन नेम्बाङ से चुपिमा ङ्याछ लाङा ङ्याछन् चुनाव लाबा निर्णय लाबली छ नेपाली फुटबल विवाद रिपरप्ता बमोबा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अर्थात् राखेपा थिएन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग से नुन एन्फा से टाङ्गा तोर्मा लाबा विभान छानबिन लाबा मोला टाङ्गा तोर्मा लाबा ताम्री छानबिन लाबन मोबा से राखेपाला सिफारिस री अध्यागमन विभाग से एन्फाला चोहो नेम्बाङ थेन ग्रेन लोन्छेन किरण राईदा फिफा विश्वकप 2026 ठङसङ्गे खोरी बोकिनबारी निब जेठ लाला निचिसे गिक ढुकुनु मेक्सिकोरी निवारी छेमा अध्यागमन विभाग से त्रिभुवन मोक्युल विमानस्थल ग्याम एसी पुइखा बम्बा रोहिल्चोह राम सहाय प्रसाद यादव से रुसला राष्ट्रिय दिनचेल्ला अवसरी तिलमा सङ्घमा गेखोरी बोकिन्छु बमला गेखोरी बोकिन्छु बा दुई नेपाल दा रुसला ग्लेबन अलेक्सेई भ्लादिमिरो भिच से असंलग्नता थिन पञ्चशील ठिम्रे आधारित नेपाललाई सार्वभौम रुङसा ठिम्दा रुसे खाइमादामान ग्रेन मूल्याङ्कन लाभन खाब मला विषय संक्षेप मला ग्लेबोन भ्लादिमिरो भिच से नेपाल थिन रुसला ब्रेलबाला फेरि कोइताम लासुमान खाबरेरी नेपाल थिन रुसला ब्रेलबा थिन डिक्सी गेलाबा ताम्रे गोर्ङी ह्युल छ्याम छ्याम नन् तासेला मला विषय नन् संक्षेप मला भेनेजुएलारी तिल्मा मुना मिनेट कारकार खेसी खाबा निस्थिक निथेन निस्थिक गाला साङ्गुल से लामन ग्रेन क्षति तानला बमला थे युल्ला ग्याल्सा कारा कासला छ्याम्री लामन सहरी मुबा दिमगदे फुप्पाला छ्याम्री लामन मिगदे दिमग्याम फिर्का बिहार बमुबा सरकार से दान्दे थेरी आपतकालीन अवस्था घोषणा लसी उद्धार लाबा थेन राहत बोला बा गेखुर सङ्सिटे बमला ग्रेन साङ्गुल खाबले छ युल्ला मिन्री लेङ्बो थान्छुमान गेतेन बा युल्चो हो डेल्सी रोड्रिक से लामन ग्ला प्रभावित ताबमुला बेसी सुङ बमुला
कैलाली जोङरी फायरिङ अभ्यास लाबा दुईरी ग्रिनेड फोसे मेन्दुगिक नेपाली सेना शिवमुला बिसाम मेन्दुगिक घाइते तपमुला फायरिङ अभ्यास लाबा दुईरी ग्रिनेड फोमा नेपाली सेना हिमाल विक्रम विष्ट शिवमुला

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय संसद प्रतिनिधि सभाकै बैठकसँग पारित भ प्रमाणीकरणको लेल पेश भएको आयल वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2083 प्रमाणीकरण कैलने छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यको हिसाबले राष्ट्रपति पौडेल नेपालको संविधानको धारा 113 उपधारा 2 आई विधेयक प्रमाणीकरण कैलने छ। कार्यालयका विज्ञप्ति जारी गरेत विधेयक प्रमाणीकरण भेल जानकारी देल गेलै छ। संघीय संसदकै दुनू सदनसँग पारित भ आल विधेयक राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण भेलाक बाद ऐनके रूपमे लागू हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहलै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाके चितवनमे जारी पहिल महाधिवेशनमे केन्द्रीय सदस्य सबके लेल भेल मतदानके मत परिणाम अयबाक लेल बाँकी रहल अछि। महाधिवेशनके केन्द्रीय सदस्यके लेल भेल निर्वाचनमे 2959 मत खसल निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। विद्युतीय मतदान प्रणाली मार्फत भेल केन्द्रीय सदस्यके मत परिणाममे 2 घण्टामे आजसँ रासोपा जनौलक अछि। निर्वाचनमे 99 केन्द्रीय सदस्यके लेल भेल निर्वाचनमे खुला दिस 64 सदस्यके लेल 210 गोटे आ भूगोल दिस 35 सदस्यके लेल 174 गोटेके जम्मा 384 गोटे उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामे छथि। एकटा प्रदेशसँ 5 गोटे निर्वाचित हेता। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगके हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशमे 18, मध्य प्रदेशमे 20, लुम्बिनी प्रदेशमे 31, कोशी प्रदेशमे 20, कर्णाली प्रदेशमे 31, बागमती प्रदेशमे 27 आ गण्डकी प्रदेशमे 27 गोटी प्रतिस्पर्धा कयने छथि। रासोपाके केन्द्रीय सदस्य 158 गोटे भेल बावजूदो 99 गोटे निर्वाचित होयबाक आ बाँकीके पाछू मनोनीत कयल जेबाक रासोपाके विधानमे उल्लेख अछि। जाहि हिसाबे 51 केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हेता तऽ 7 प्रदेशके सभापति पदीन सदस्यके रूपमे केन्द्रीय सदस्य रहता। विधान हिसाबे पहिल चरणमे सभापति आ केन्द्रीय सदस्यके निर्वाचन सम्पन्न भयो। नतिजा अयलाक बाद दोसर चरणमे पदाधिकारीके निर्वाचन होयत। पार्टीके प्रवक्ता मनीष झाक हिसाबे 99 गोटे निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यसँग दोसर चरणमे होबयवला निर्वाचन मार्फत पदाधिकारी चुनात। केन्द्रीय सदस्यके मत परिणाम सार्वजनिक कयलाक बाद आइए 4 बजेसँ पदाधिकारीके मतदान भेल बताएल गेल बावजूदो पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन सँ करबाक प्रयास भऽ रहल जनाओल गेल अछि। पार्टी सभापतिमे रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भऽ चुकल छथि। रासोपा तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयके किछु दिन पहिने ही करीब 10,000 भायल एंटी रेबीज खूब मौजदात रहल जनौलक अछि। मन्त्रालयके सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी हाल केन्द्रीय प्रादेशिक तथा जिला स्तरीय अस्पतालके भण्डारणमे 10,011 भायल एंटी रेबीज खूब मौजदात रहल जानकारी देलनि। हुनक हिसाबे विश्व स्वास्थ्य संगठनके सहयोगमे 2005 भायल एंटी रेबीज खूब प्राप्त भऽ चुकल आ थप 4,500 भायल खूब आबयवला किछु दिन भीतर प्राप्त होयबाक सुनिश्चित भेल अछि। हुनक हिसाबे देशे भर आवश्यक रेबीज रोकथाम तथा उपचार सेवाके निरन्तरता सुनिश्चित करबाक लेल मंत्रालय सम्बन्धित निकाय संग समन्वयक आवश्यक पहल आगू बढ़ौलक अछि। मंत्रालय स्थानीय तहके कुकुर तथा अन्य जानवरके कटलासँ व्यवस्थापन तथा आवश्यक खोप सेवाके सहजीकरण करबाक लेल अनुरोध सेहो कयलक अछि। मंत्रालय उपलब्ध खोपके व्यवस्थित वितरण तथा व्यवस्थापन मार्फत सेवाके निरन्तरता कायम रखबाक लेल सम्बन्धित निकाय सङ्ग निरन्तर समन्वय भऽ रहल सह प्रवक्ता डॉक्टर अधिकारी जानकारी देलनि। हुनक हिसाबे शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल टेकूमे एंटी रेबीज खोप करीब 40 दिनके लेल पहुँचल जेहन मौजदात रहल बतौलनि। सेवा स्वास्थ्य सेवा विभागसँ नियमित खरीद प्रक्रिया सम्पन्न भेलाक बाद खोप आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमे नियमित हेबाक अपेक्षा कयल गेल बतौलनि। सशस्त्र प्रहरी बल मनसून जन्य विपद प्रतिकारीके लेल देशके विभिन्न 54 स्थानमे अस्थायी मनसून प्रतिकारी बेस स्थापना कयलक अछि। सशस्त्र प्रहरीके कार्यालयसँ विपद उद्धारमे परिचालन होबयके समय लागत विपदजन्य स्थानके पहिचानके अस्थायी बेस स्थापना कयल गेल अछि। एहि हिसाबे कोशी प्रदेशमे 6, मधेसमे 11, बागमतीमे 16, गण्डकीमे 4, लुम्बिनीमे 7, कर्णालीमे 2 आ सुदूरपश्चिम प्रदेशमे 8 अस्थायी बेस कैम्प स्थापना भेल अछि। सशस्त्र प्रहरी हिमाल पहाड़ आ तराईके 16 स्थानमे विपद व्यवस्थापन बेस स्थापनाक आवश्यक जनशक्ति आ स्रोत साधनके तैयारी अवस्थामे रखने अछि। धनकुटा, सुनसरी, बारा, सप्तरी, धादिङ, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे प्लान चौक, म्यागदी, गोरखा, दाङ, सुर्खेत, जुमला, डरेलधुरा, डोटी आ कैलालीमे स्थायी बेस स्थापना कऽ चुकल अछि। एहि वर्षके मनसून जन्य विपद सङ्ग लड़यके लेल 8,180
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी के 2400 घंटा तैयारी अवस्था में राखल गेल जानकारी दैत सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्र बहादुर कार्की अखार मशांत धरि सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी के विपद व्यवस्थापन अनुशिक्षण तालीम प्रदान कैल जेबाक बतौलें। मध्य प्रदेश के श्रम तथा यातायात मंत्री शारदा देवी थापा संचार माध्यमे भाषा के शुद्धता सही अर्थ मर्यादित उपयोग के अधिक महत्व रहल बतौलन भाषिक शुद्धता से संचार माध्यम के विश्वसनीयता प्रभावकारिता तथा गरिमा कायम राखल महत्वपूर्ण भूमिका रहला से भाषा प्रयोग में संचारकर्मी के सहजग आ संवेदनशील हेबा आवश्यकता रहल बतौलन। आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेश के समन्वय तथा नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखा के आयोजना में बुध दिन से बर्दिवास में शुरू भेल दू दिनक मध्य प्रदेश के भाषिक पत्रकारिता एवं संचार माध्यम प्रवर्धन संबंधी कार्यशाला के उद्घाटन करते तो मंत्री थापा ई धारणा व्यक्त कलन। ओ बहुभाषिक समाज में मातृभाषा के उपयोग से नागरिक के सरकार के गतिविधि तथा सेवा संबंध में बुझल सहज बनबित बतौबित संचार माध्यम सब स्थानीय भाषा के संरक्षण आ प्रवर्धन के लिए गोरखा पत्र रेडियो नेपाल से प्रेरणा तथा जानकारी लेबा चाहिए बतौलन। कार्यक्रम में आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र खड़का सातों प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश सरकार सबसे पहले प्रदेश सरकार संचार ऐन तथा नियमावली निर्माण कर संचार क्षेत्र के व्यवस्थित करवाक अग्रसरता दिखाने स्मरण करौलन। संचार माध्यम तथा संचार कर्मी के क्षमता अभिवृद्धि के लिए प्राधिकरण सक्रिय रूप में लागल हुनक कहब छलन। औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय बीरगंज औषधि एन विपरीत काज करयवला 567 फार्मेसी दुकान के दर्ता खारिज कलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के साउन से जेठ मशांत धरि संचालन कैने अनुगमन तथा निरीक्षण के क्रम में औषधि एन विपरीत के क्रियाकलाप करैत आयल अहि संख्या में फार्मेसी दुकान के दर्ता खारिज कयल गेल। औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय बीरगंज के प्रमुख शंभु साह अहि के जानकारी देलन। मध्य प्रदेश के परसा बारा रौतहट सरलाही महतरी धनसा आ बागमती प्रदेश के मकवानपुर चितवन सिंधुली क 9 जिला में औषधि व्यवसाय के नियमन तथा अनुगमन करताल अ कार्यालय अनुगमन के क्रम में अन विपरीत के क्रियाकलाप केने देखलाक बाद फार्मेसी दुकान के दर्ता खारिज केने कार्यालय प्रमुख शाह बतौलन। देश के प्रमुख व्यापारिक नाका के रूप में रहल बीरगंज भंसार नाका होइत आर्थिक वर्ष 2082-83 के 11 महीना में भारत तथा अन्य देश से 99,66,45,00,000 मोल बरोबरीक नेपाली उत्पादन निर्यात भेल छ। गत आर्थिक वर्ष

कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष में 2,49,19 करोड़ राजस्व संकलन करबाक लक्ष्य रखने छल, मुदा ई अवधि में लक्ष्य के 89% मात्र राजस्व संकलन कलक अछि। पीरगंज भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी उदय सिंह बिष्ट चालू आर्थिक वर्ष के 11 महीना में राजस्व संकलन उत्साहजनक भेल दावी कयलनि। मुस्लिम समुदाय के मोहर्रम ताजिया पर्व के लक्षित करैत शांतिपूर्ण मर्यादित तथा धार्मिक सद्भाव कायम रखैत सम्पन्न करबाक उद्देश्य से जिला प्रशासन कार्यालय परसा में सर्वपक्षीय समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी भोला दहाल के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में पर्व के सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सामाजिक सद्भाव कायम रखबाक विषय में विस्तृत विचार विमर्श भेल छल। बैठक में प्रमुख जिलाधिकारी भोला दहाल, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के आयोजक संस्था के आधिकारिक पत्र आइए जिला प्रशासन कार्यालय में दर्ता करबा लेल निर्देशन देने छल। वो आधिकारिक पत्र प्राप्त भेलाक बाद जिला सुरक्षा समिति के बैठक बैस कर मोहर्रम पर्व के अंतिम रूट तथा विस्तृत सुरक्षा योजना तय कयल जेबाक जानकारी देलनि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: आमा खै आज खाजाको पैसा नदिने?
1: दिन्छु, किन नदिउँला?
0: आज त त्यो सधैँ जस्तै 100 रुपियाँले पुग्दैन है।
1: 100 रुपियाँले पुग्दैन रे? अनि कति चाहियो त?
0: दिनु न 1000 जति।
1: अनि त्यत्रो पैसा चाहिँ किन चाहियो नि बाबु?
0: आज अनि साथीको बर्थडे छ त्यही भएर।
1: यहाँ पैसा कमाउन कति गाह्रो छ, तँलाई 1000 रुपियाँ माग्न सजिलो छ है। जे पाए त्यहीमा चाहिँ खर्च नगर है बाबु। फेरि
0: गर्दिन गर्दिन, ल म गएँ।
1: ल ल ल, राम्रोसँग जा, समयमै घर आएस है।
0: हस्।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के केंद्रीय सदस्य के लिए हुए निर्वाचन का मत परिणाम सार्वजनिक। 6 पदाधिकारियों के लिए आज रात होगी मतदान। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक का किया गया प्रमाणीकरण। और वेनेजुएला में आए 2 बड़े और शक्तिशाली भूकंपों में कम 164 लोगों की मृत्यु तथा भवनों सहित अनेक संरचनाओं को पहुंची भारी क्षति। अब समाचार विस्तार से। चितवन के भरतपुर में जारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के प्रथम महाधिवेशन अंतर्गत केंद्रीय सदस्य पद के लिए हुए निर्वाचन का मत परिणाम सार्वजनिक हुआ है। 99 केंद्रीय सदस्य पद के लिए आज हुए मतदान का मत परिणाम सार्वजनिक हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के प्रथम महाधिवेशन के अंतर्गत दूसरे चरण के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी ने जानकारी दी कि पार्टी के पदाधिकारियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली शाम को प्रकाशित की गई। इसी प्रकार शाम के 7:30 बजे से 8 बजे तक उम्मीदवारों के विरुद्ध दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई। रात 8:15 तक पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच की गई, जबकि उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की समय सीमा रात 8:30 बजे तक निर्धारित की गई थी। पदाधिकारियों पदों के उम्मीदवारों की अंतिम नामावली रात 8:45 पर प्रकाशित की गई और आज रात को ही पदाधिकारियों के लिए मतदान होगी। इसी तरह मतगणना रात 12:15 से 1:15 तक की जाएगी और रात 1:30 पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन के माध्यम से उपसभापति, महिला उपसभापति, महामंत्री, 2 खुला सह महामंत्री तथा 1 महिला सह महामंत्री का चयन किया जाएगा। रासोपा के नेता मनीष झा के अनुसार 6 पदाधिकारियों के लिए मतदान करने में प्रत्येक प्रतिनिधि को लगभग 4-5 का समय लगने का अनुमान है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2083 प्रमाणीकरण किया है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रतिनिधि सभा की बैठक से पारित होकर प्रमाणीकरण के लिए पेश होने के लिए आए उक्त विधेयक नेपाल के संविधान के मुताबिक प्रमाणीकरण किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि यदि जनसंचार माध्यम जनता का विश्वास खो देते हैं तो उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आज चितवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने संचार कर्मियों से अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों की गंभीर समीक्षा करते हुए आत्म मूल्यांकन करने का आग्रह किया। मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि वे सभी सरकार वालों के साथ संवाद कर आवश्यक नीतियों, नियमों और कानूनों में संशोधन के माध्यम से संचार क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग करने को तैयार है। एक अन्य प्रसंग में मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि वर्तमान सरकार देश और जनता को केंद्र में रखकर ऐसे कार्यों में सक्रिय है जिनका प्रत्यक्ष अनुभव नागरिक कर सकें। आज ही पार्टी के जारी महाधिवेशन स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि महाधिवेशन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा को और अधिक सशक्त, जिम्मेदार और एकीकृत बनाएगा। राजनीतिक दलों के जीवन में महाधिवेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री तिमल सिन्हा ने विश्वास व्यक्त किया कि महाधिवेशन द्वारा चुना जाने वाला नेतृत्व देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रासोपा को आम नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव से नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अर्बम ने शिष्टाचार भेंट की। लैंचौर स्थित उपराष्ट्रपति कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्ष मनाया जाने वाला नेपाल नेपाल अमेरिका कूटनीतिक संबंध स्थापना का 80वां वर्षगांठ समारोह दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मित्रता और साझेदारी का प्रतीक बनने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भेंट के दौरान कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अर्बम ने कहा कि नेपाल और अमेरिका के बीच संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं, ऐतिहासिक तथा बहुआयामिक भी है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका इन संबंधों को और अधिक ऊंचाई तथा मजबूती प्रदान करने के लिए इच्छुक है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
5: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वर्तमान में उसके पास लगभग 10,000 वायल एंटी रेबीज टीके का भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय, प्रांतीय तथा जिला स्तरीय अस्पतालों के भंडार में फिलहाल 10,011 वायल एंटी रेबीज टीके उपलब्ध है। उनके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 2,500 वायल एंटी रेबीज टीके प्राप्त हो चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 4,500 वायल टीके आगामी कुछ दिनों के भीतर प्राप्त होने की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने स्थानीय निकायों से कुत्तों तथा अन्य जानवरों के काटने की घटनाओं के प्रबंधन और आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुगम बनाने का अनुरोध भी किया है। सह प्रवक्ता डॉक्टर अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध टीकों के सुव्यवस्थित वितरण और प्रबंधन के माध्यम से सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए मंत्रालय संबंधित निकायों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर ने महाकाली नदी में जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए नदी किनारे और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पूर्व सावधानी बरतने का आग्रह किया है। प्रशासन ने आज जारी एक सूचना में बताया कि भारत की धौली गंगा जलविद्युत परियोजना के बाद में कल सुबह 6 बजे से परसों शाम 5 बजे तक जमा हुई रेत, मिट्टी, गाद और मलबे की सफाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मोहन चंद्र जोशी ने बताया कि इस उद्देश्य से बांध के द्वार खोले जाने संबंधी सूचना भारतीय पक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, इसलिए निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक सावधानियां अपनाने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले जिला प्रशासन कार्यालय दारचूला ने भी तटीय क्षेत्रों के नागरिकों को पूर्व सावधानी बरतने के लिए कल ही एक सूचना जारी कर सतर्क रहने का आग्रह किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में कल शाम को पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया, जिसके केंद्र याराकुई राज्य के शैन फेलिपे में था। इसके सिर्फ 39 सेकेंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भूकंप के बाद 30 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। आशंका है कि भूकंप की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। राजधानी काराकाश में भी भूकंप से कई इमारतें गिर गई है, पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है और मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घर तुरंत खाली करने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा के केंद्रीय सदस्य के लिए हुए निर्वाचन का मत परिणाम सार्वजनिक, 6 पदाधिकारियों के लिए आज रात होगी मतदान। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक का किया गया प्रमाणीकरण और वेनेजुएला में आए 2 बड़े और शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 164 लोगों की मृत्यु तथा भवनों सहित अनेक संरचनाओं को पहुंची भारी क्षति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चला।

जिसकी सोच में खुद्दारी की महक है, कि जिसकी सोच में खुद्दारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आपके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदा

0: बहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में मैं हूं रमिता यादव
1: और मैं हूं सीमा शर्मा
0: और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न बज्राचार्य जी। तो दोस्तों मीडियम वेव 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलोहर्ज के साथ साथ एफएम बैंड 98 और 103 मेगाहर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np, www.onlineradionepal.gov.np और www.psvnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं।
1: इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अगर आप भी कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो कर ले, ताकि कार्यक्रम शुरू होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग कार्यक्रम के लाइव वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ पाए और अपने मन की बात हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा भी कर पाए। जी हाँ, और आप यदि किसी कारणवश लाइव न भी देख पाए हो तो बाद में भी इसे मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी नए मित्र इस कार्यक्रम में जुड़ पाएँ और अपनी बातें रख पाएँ। साथ ही साथ रेडियो नेपाल आप लोग सुनते हैं तो रेडियो नेपाल सुनना आप लोगों को कैसा लगता है ये भी प्रतिक्रिया के तौर पर हमें कमेंट में बता सकते हैं। हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज है बारी फेसबुक कॉमेंट्स की और पत्र की। तो पहला पत्र है राकेश अहीर जी का, सिरहा से हैं ये, और ये लिखते हैं, मलमल धोए सिर को धोए, धोए ना मल के मैल, मलमल धोए सिर को धोए, धोए ना मन के मैल, नहाए गंगा गोमती, राधे राधे बोले के बोल। और आगे लिखा है, बादल बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और इन्होंने कहा है कि मुझे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना सुना दीजिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, जो कि सन 1996 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाजें हैं सपना अवस्थी, उदित नारायण, अलका याग्निक की। और इस गीत के गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।
1: और इसके साथ ही मेरे हाथ में ये जो दूसरा पत्र है, ये लिखते हैं श्याम सुंदर महेश्वरी फारविसगंज बिहार भारत से। और वो लिखते हैं, अतीत वह आकार है जो ढल चुका है और भविष्य वह आकार है जो अभी तक बना नहीं है।
0: क्या बात?
1: लेकिन वर्तमान वह आकार है जो अभी हमारे समक्ष उपलब्ध है। वर्तमान में स्वयं को स्थित करके इसके साथ गतिशील होना ही सफल लोगों का गुण है। प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक लोत्से ने वर्तमान के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि आप उदास हैं, इसका अर्थ है आप अतीत में जी रहे हैं। आप चिंतित हैं, इसका अर्थ है आप भविष्य में जी रहे हैं। किंतु आप शांति में हैं तो मान लीजिए कि आप वर्तमान में जी रहे हैं। ये बात स्वयं भी अनुभव की जा सकती है। अभी आप भविष्य और अतीत की स्मृति से बाहर निकलकर स्वयं को केवल वर्तमान में स्थिर करके देखिए। ना तनाव होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ा, ना चिंता। आप सबके पार होंगे, परम आनंद में होंगे। वर्तमान सच में उपहार ही है।
0: और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और बहुत ही खूबसूरत बात शेयर करने के लिए श्याम सुंदर महेश्वरी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और
1: उन्होंने सोहन जोशी गीत कौन दिशा में, अच्छा
0: सोहन जोशी जी हैं,
1: अच्छा जो कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया वाला गीत सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा, तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, तो ये था कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया मूवी नदिया के पार से, जो कि बनी थी 1982 में, और आवाज़ें हैं हेमलता जसपाल सिंह का और गीत संगीत है रविंद्र जैन का।
1: और ये पत्र फिर से श्याम सुंदर महेश्वरी जी फारबिसगंज बिहार से, और क्योंकि ये बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे और मोटिवेशनल लिखते हैं, और इन्होंने लिखा है कि जीवन स्वयं एक दौलत है, यदि आप जीवन का सदा सफल और सार्थक उपयोग करते हैं तो आप निश्चय ही अमीर हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि केवल मेहनत करने पर भर से सब कुछ होता है, तो गधे कब के जंगल के राजा बन चुके होते, सिवाय खुद को आलसी बनाने के और कुछ नहीं। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग भी अपने आप को व्यस्त और मेहनतकश रखते हैं। भला जब आपके पास जिंदगी का कोई ऊंचा मकसद या सपना है, तो याद रखिए आपको अभी काफी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म भूमि पर फल पाने को श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें भरना पड़ता है। और इसी तरह नुरुल हुदा लस्कर जी हैं आसाम भारत से, इन्होंने कहा है कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ, गाने के बोल है धूप में निकला न कर रूप की रानी, और ये गाना मैं परमिता जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म गिरफ्तार से, जो कि सन 1985 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, और इस गीत के गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार है बप्पी लहरी जी। और ये पत्र हैं,
1: ये पत्र है हिमकेश्वर साहू, हिम राहुल साहू और चंदा साहू, भाटापड़ा छत्तीसगढ़, भारत से। वो लिखते हैं, प्रार्थनाओं की ताकत को कभी कम मत आंकिए, यह वह खामोश ऊर्जा है जो आपको असंभव कार्यों को संभव बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। वाह, क्या बात है। उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है फिल्म प्यासा सावन से, गाने की बोल है, तेरा साथ है तो मैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है ना
0: जी। और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत बिना देरी किए।

0: जी हाँ दोस्तों, तो ये था प्यासा सावन मूवी की सॉन्ग जो कि बनी थी 1981 में, और इसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, गीत है संतोष आनंद जी का और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का।
1: और इसी बीच है हेमंत कुमार लोहार जी, और इन्होंने अपना पता नहीं लिखा था और कमेंट में लिखा था कि कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। और धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, लेकिन मित्र हमेशा के लिए धन होता है।
0: वाह।
1: और इन्होंने फरमाइश की है, गाने के बोल हैं, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया में दिल भर गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा और पुराना गाना है, लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल गाना है। तो आइए सुनते हैं हेमंत कुमार लोहार जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म दाग से, जो कि सन 1952 में रिलीज़ हुई थी, और इस गीत में आवाज़ है तलत सहमूद जी का, और इसमें गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार है शंकर जयकिशन। और ये कार्यक्रम का आखिरी पत्र है, और अब हम कार्यक्रम के अंत में भी आ चुके हैं। और सुशील कुमार यादव जी हैं कॉर्नेलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश भारत से, और ये लिखते हैं, मैसेज एक मस्ती है, ये कॉल से सस्ती है,
1: वाह,
0: नींद को उड़ाती है, मन को बहलाती है, दिमाग को पकाती है, पर कुछ भी हो यार, एक दूसरे की याद तो दिलाती है।
1: क्या बात है, एक बार फिर से पढ़िए, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से प्लीज, एक बार फिर से
0: आप ही पढ़िए।
1: हाँ, नहीं नहीं, ये आवाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक बार फिर, है ना,
0: मैसेज एक मस्ती है,
1: वाह,
0: ये कॉल बड़ी सस्ती है,
1: वाह क्या बात है,
0: नींद को उड़ाती है, मन को बहलाती है, दिमाग को पकाती,
1: क्या बात है,
0: पर कुछ भी हो यार, एक दूसरे की याद तो बहुत दिलाती,
1: बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात है।
0: और आगे लिखा है कि भिक्षा का पात्र भरा जा सकता है, पर इच्छा का पात्र कभी नहीं भरता,
1: क्या बात है।
0: और फिर से नुरुल हुदा लस्कर जी हैं, उन्होंने असम भारत से हैं, और उन्होंने फिर से गाने की फरमाइश की थी, और दो गाने की फरमाइश की थी, एक तो पहले बज चुका है, और ये डॉन मूवी का गाना उन्होंने खई के पान बनारस वाला गाने की फरमाइश की है, और ये गाना है डॉन मूवी से, जो कि सन 1978 में रिलीज हुई है, और किशोर कुमार के आवाज में, और इस गीत के गीतकार है अनजान और संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी, और यही कार्यक्रम का आखिरी गाना रखते हुए, और ये गाना रखने से पहले और आप सभी से विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं, दोस्तों ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए ज़रूर दें, साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता या गज़ल शामिल करना ना भूलें। हमारा पता है, कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634, ईमेल पता है madhurimahindi@gmail.com, साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। तो कार्यक्रम का आखिरी गाना रखते हुए आज के कार्यक्रम से प्राविधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं रमिता यादव
1: और मैं सीमा शर्मा
0: आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो नेपाल, नमस्कार, शुभरात्रि।
2: पर भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से मीठी छुरी।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के